एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा

भजन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड। नमस्कार आदरणीय श्रोता, शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोडद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम भजन सुमिरनमा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई स्वागत गर्दछु र अब 8 बजेसम्म यहाँ सुमिर भजनका साथ

सत्यता को सुनौलो परंपरा। जय माता दी गोल पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड न्यू रोड। शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड को प्रायोजन में रहेको इस कार्यक्रम भजन सुमिरन में यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ

0: अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम ओशो प्रवचन ओशो सन्देश।
1: जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती, एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का, हिंसा का, छीन झपट का, एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है, धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझ लें, इसलिए पूरब के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते। वो नमस्कार केवल औपचारिक नहीं, वो केवल एक परंपरा और रीति नहीं, वो नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है, और जो विनम्र है केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक है, अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें, विराट उनका न हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट के घर ले आए, लेकिन जो सार्थक है वो उनकी लूट का हिस्सा न बनेगा। इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती। ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा, स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें न मिल सकेगी, उसका प्रेम तुम न पा सकोगे। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरह, वे बलात्कारी, वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीरफाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाए, लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी ना पाओगे, और अगर उसकी आत्मा को ना छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वो जो छिपा था बीज प्रेम का, वो कभी अंकुरित ना होगा, उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वो प्रकृति पर हमला है, जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़फोड़ है, काटपीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा, फूल को काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वो सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे, तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था, लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें ना मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता, भरोसा करे भी कैसे, इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो क्षुद्र को पाने का द्वार है, आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए, अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए, और जल्दी वहां नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, वहां बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती, इस शास्त्र का पहला चरण है, ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दें, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वो समझ में ना आएगी। पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रमक वृत्ति को थोड़ा दूर करें। ये समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं, हृदय से आने वाली है। ये समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी, ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वो समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है, वो समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो जैसे कोई चाय को पीता है। तुम उसे गटक नहीं चाहते, वो कोई कड़वी दवा नहीं है, तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, गणित समाप्त हो गया। कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं, और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूर्व में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म होगी जब समझ ही लिया, तब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती, इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेंगी, इसे तो जाने अनजाने नमान कितनी बार दोहराना पड़ेगा, इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब, विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा, तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे, कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठ ही चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं। और एक ही आदमी रोज सुबह उठ के गीता पढ़ लेता है, पागल हो गया है। उनको ख्याल में नहीं कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है, उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है, उसका संबंध तो

अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत हैं, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत हैं। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फूर्णा नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा ईर्षा और द्वेष में जिया है, वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुंफित है, वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत, तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना, और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो, क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है, एक झलक मिली, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसी से समझ आएगी, तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक, वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है, विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है, लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज होता है उसमें सारा वृक्ष समाया होता है, जैसे बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते, देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले, जो वर्तमान में भविष्य को देख ले, जो आज कल को देख ले, जो दृश्य से अदृश्य को खोज ले, बड़ी पैनी आंखें चाहिए, वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है, अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा। वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं। और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा तभी तुम पहचान पाओगे। ये सूत्र बीज है, इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा। तुम अभी निर्णय मत करना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे, कचरा कूड़ा मालूम पड़ेगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत, कीमती होते, लेकिन बीज और कीमती से कीमती कोहनूर में भी एक फर्क है कि तुम कोहनूर को बो दो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा, वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है, उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो लेकिन जीवन उसमें नहीं, वो लाश है। और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, कोई उसकी कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है, तुम उसे बो दो उससे विराट वृक्ष पैदा होगा, और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे। एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं, फिर करोड़ों बीज से हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते हैं, एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज है, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती, उसको बोओगे हृदय में और अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, तभी तुम जान पाओगे, तभी निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसके पहले कि हम शुरू करें, धर्म महान क्रांति है। धर्म के

0: नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है। इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी, तुम भयभीत भी होगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना, क्योंकि वे बचे भी रहे तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं, तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो। मंदिर काफी सजे हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं। मंदिर में काफी रोशनी, उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही, क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है, तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख के घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं एक 3 महीने विश्राम कर लूं, जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है, कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया, 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया, उसने कहा मूड वही हमारा व्यवसाय थे, क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? उन्हीं पर आधार था, और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वो आग है, अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना, अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा, तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत है। इन बातों को ख्याल में रख के एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है, चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे पराया है, मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं, ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं, मेरा देश मेरी जाति मेरा धर्म मेरा परिवार मेरे का सारा खेल है। समाज जीता है मेरी की धारणा पर, इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है, धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात हुई। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके तीन बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुण धर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो वो तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा, गांव का जो सबसे बड़ा धनपति वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना, चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पढ़ी थी न कोई गवाह था। इतना भी ना करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई ना थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, ग्लानि, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए हो, इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती, उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ, उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार आवाज कि बचाओ। नमस्कार
1: आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै, यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज जिस शख्सियत की बात मैं करने वाली हूं, उनके बारे में सोचते से ही ऐसा होता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, एक अलग सी चमक है जो कि हमारी आंखों में आ जाती है। बात कर रही हूं मैं उस शख्सियत की जो खुद ही इतनी चमक और चकाचौंध के साथ में हमेशा घूमते हैं कि ये होना तो लाजमी है। बप्पी दा है आज के हमारे सुपरस्टार, जिनके बारे में मैं कुछ बातें करने वाली हूं, जिनके कुछ खास गाने आपके लिए बजाने वाली हूं। ब्लिंग ब्लिंग बप्पी दा कहो या खुश मिजाज बप्पी दा कहो, 3 साल की उम्र से इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में तो ये मुंबई आ गए थे, लेकिन इनके करियर को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा इनके मामू का। कौन थे इनके मामा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल याद कर ही रहे हैं बप्पी दा को, तो गाना उन्हीं की आवाज में याद आ रहा है। डिस्को डांसर

0: कारोबार को जानकारी दिन SMS अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: टुगेदर वी डेलिभर।

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: रेडी मिडिया शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
1: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
2: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
1: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
3: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
1: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहचान।

क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं बप्पी दा की। उन्हीं के बनाए हुए गाने आज मैं यहां पर चुन करके लेकर आई हूं आपके लिए। वैसे बप्पी दा की जहां तक बात की जाए, 19 साल की उम्र में ये मुंबई आ तो गए थे स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन उस समय तक हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ चुकी थी और यूं किसी नए सिंगर का या नए म्यूजिशियन का, म्यूजिक कंपोजर का आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। लेकिन ऐसे में सामने आए गॉडफादर बन करके, बप्पी दा के मामूजान यानी कि किशोर दा। जी हाँ, कई लोग नहीं जानते कि किशोर कुमार बप्पी दा के मामा लगते थे। किशोर दा ने तो बप्पी दा का साथ दिया ही, साथ ही लता मंगेशकर जी ने भी बप्पी दा का बहुत साथ दिया। लता मंगेशकर जी को बप्पी दा अपनी गॉड मदर माना करते हैं आज तक भी। यही नहीं, अगर बप्पी दा की बहुत लोगों ने मदद की तो बप्पी दा ने भी कई लोगों की मदद की। जितेंद्र जी को एक तरफ जहां कई सारे हिट सॉन्ग्स दिए, वहीं दूसरी तरफ मिथुन दा तो ये मानते हैं कि उनका करियर ही बना बप्पी दा के सुपर हिट गानों के कारण। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा आ गया था बप्पी दा के करियर में जब उन्होंने सोचा था कि उन्हें मुंबई छोड़ छाड़ करके वापस कोलकाता चले जाना चाहिए। और ऐसे में बप्पी दा की माँ ने बप्पी दा को एक गिफ्ट दिया था, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। क्या था ये गिफ्ट, क्या था ये तोहफा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन फिलहाल बप्पी दा के मामूजान की आवाज में गाना, किशोर कुमार की आवाज में गाना है शराबी फिल्म से दे दे प्यार दे।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज बात हो रही है ब्लिंग ब्लिंग बप्पीदा की। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि किस तरह से एक हारे हुए थके हुए बप्पीदा वापस घर लौट जाना चाहते थे, मुंबई छोड़ के वापस कोलकाता बस जाना चाहते थे। लेकिन उस समय अपने हारते हुए बेटे को देख करके बप्पीदा की माँ ने उन्हें एक सोने की चेन तोहफे में दी। उस चेन में माता रानी का एक पेंडेंट भी बना हुआ था, लगा हुआ था, और बप्पीदा की माँ ने कहा कि इसे पहन के जाओ और फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पहली मूवी जिसके लिए बप्पीदा ने म्यूजिक दिया, गाना भी गाया उस चेन को पहनने के बाद, वो मूवी थी जख्मी 1974 में। और वही वो समय था जब से बप्पीदा की जिंदगी और बप्पीदा का करियर पलट गया। उनकी जिंदगी की, उनके करियर की सबसे बड़ी मूवी बन गई जख्मी, और बप्पीदा का जो जख्मी करियर था, जो जख्मी दिल था, उस पर भी मलहम लगा दिया इस फिल्म जख्मी ने। कहते हैं उस दिन के बाद से आज तक बप्पीदा हर साल के नाम पे एक सोने की चेन लेते आए हैं। वैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से तो बप्पीदा के पास में 2 किलो से थोड़ा सा कम सोना है, लेकिन असली में कितना है ये तो हम नहीं जानते। हमें तो लगता है कि वो 2 किलो से ज़्यादा पहन के ही घूमते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक चमचमाता हुआ गाना ज़रूर सुनाने वाली हूँ, बप्पीदा का ही बनाया हुआ। मूवी है सैलाब, गाने का नाम है हमको आजकल है इंतज़ार। बप्पीदा की जिंदगी का एक पहलू था जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी, झगड़ा समान हो गया था बप्पीदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच। क्या था वो किस्सा, सुनाऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद।

क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक. मैं हूं रुचि आपके साथ. बप्पी दा के ही आज कुछ गाने यहां पर चुन करके लेकर आई हूं आपके लिए, उनके बनाए हुए कुछ, उनके गाए हुए गाने. एक समय था जब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. बप्पी दा को हम दिल से चाहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उनसे और उनके संगीत से, लेकिन एक इल्ज़ाम जो उन पर हमेशा लगाया गया है वो था म्यूजिक को कॉपी करने का, इधर उधर से इंस्पायर होने का इल्ज़ाम. ऐसा ही समय आया था जब बप्पी दा का गाना आया था तम्मा तम्मा लोगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे. दोनों का म्यूजिक बिल्कुल एक समान, लेकिन दोनों ही गाने अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स के बनाए हुए थे. यही नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी तो ये बन पड़ी कि ये दोनों ही गानों का म्यूजिक एक अमेरिकन ट्यून से उठाया हुआ था. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और बप्पी दा ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये दोनों इस बात पे झगड़ते रहे कि कौन ये धुन को पहले लेकर के आया था. मजे की बात यह है कि लड़ाई इस बात की थी कि किसने इस धुन को पहले कॉपी किया. लेकिन ये नहीं, फिलहाल एक ओरिजिनल गाना जरूर मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगी, बप्पी दा का बनाया हुआ, फ्रॉम द फिल्म अरमान. उषा उत्तुप, जो कि बप्पी दा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर्स रही हैं, उनकी आवाज में.

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। Four eight.

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें और आज 1964 की यादें समेट कर पेश कर रहा हूँ उस साल की यादगार गीतों का दूसरा हिस्सा।

इस खूबसूरत फिल्म मेरे महबूब का संगीत 2 वर्षों में बट गया था साहब, तभी इसके कई गीत छांव में रह गए थे। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक 2 बार पहुंचा। सन 1963 में वो नंबर 24 पर था और 1964 में आप उसकी झलक काफी ऊपर की पायदान पर सुनने वाले हैं। बहरहाल आज मैं अपनी यादों में करवटें बदल बदल कर आपको सुनाऊंगा गीतमाला के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही अजीब सी कहानी। आप तो जानते ही हैं बहनों भाइयों कि मेरा नाता रेडियो सिलोन से जुड़ा सन 1951 में, फिर सन 1952 में गीतमाला शुरू हुई और धूम मचाने लगी और फिर और कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए मैं करता रहा। 1956 में मैंने कोलंबो में रेडियो सिलोन के स्टेशन पर भी काम किया महीने भर के लिए और यही सब करते करते बनते बनते मैंने रेडियो सिलोन को ही अपनी पहली प्रेमिका पहली महबूबा बना लिया और मन ही मन में उसके लिए ऐसे मजेदार गाने भी गाने लगा।

अच्छा भाई 1964 की छाओ के दो गीतों में आपने नौशाद साहब की मधुर धुन भी सुन ली और दादा सचिंदे बर्मन की मजेदार तर्ज भी सुन ली। अब सुनिए बहनों और भाइयों हाल रेडियो सिलोन की उस बड़ी अजीब सी घटना का जो शुरू हुई थी 1964 के आखिर में और रंग लाई अगले साल जनवरी में। हुआ यूं बहनों और भाइयों के सन 64 में रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया हिंदी सर्विस का कारोबार सिर्फ दो शानदार अनाउंसर्स चलाया करते थे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज। मगर साल के आखिर में शिव कुमार सरोज बीमार पड़ गए और इलाज के लिए बंबई लौट आए और सारी सर्विस का बोझ कई हफ्तों तक अकेले संभालते संभालते हमारे गोपाल शर्मा भी इतने थक गए कि एक सुबह उन्होंने फट से ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और कोलंबो छोड़कर बंबई लौट आए। तो फौरन रेडियो सिलोन के डायरेक्टर जनरल ने हमारे बंबई के दफ्तर में फोन किया कि यहां सब गड़बड़ है, हिंदी सर्विस खतरे में है। कुछ साल पहले अमीन सायानी यहां आए थे, वो हिंदी सर्विस का सारा काम जानते हैं, उन्हें फौरन कोलंबो भेजिए। बस तो साहब मुझे ऑर्डर मिला कि अभी इमीडिएटली सामान बांधो, शाम तक तुम्हारा वीजा और एयर टिकट आ जाएगा और कल सुबह के प्लेन से तुम फौरन पहुंचो कोलंबो, गो। तो भाई मैं तो खुशी खुशी लपटा और झपटा कि वाह वाह मिल गया मुझे दूसरा मौका रेडियो सिलोन जाने का। तो बस अगले दिन पहुंच गया मैं प्लेन में बैठकर कोलंबो और एयरपोर्ट से सीधे अपना सूटकेस थामे टैक्सी पकड़कर दौड़ा रेडियो सिलोन के स्टेशन पर। मगर वहां पहुंचकर मैं दंग रह गया बहनों भाइयों, क्योंकि वहां तो भाई सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था।

0: स्वाद मात्र होइन प्रेम पस्कने,
1: स्वाद मात्र होइन प्रेम पस्कने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स, बसन्तपुर न्यू रोड, दमजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320711 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स, शुद्धताको पहिचान।
5: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में सॉरी बहनों भाइयों, मेरी बड़ी पुरानी आदत है ना बातों से गीतों को जोड़ते जाने की। खैर, इकबाल कुरैशी की धुन से सजे हुए छाओं में गूंजते हुए इस लाजवाब गीत के बारे में एक खास बात मैं आपको यहां बताता चलूं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और हीरो भी वो महान इंसान थे जो पिछले कई वर्षों से फिल्मी दुनिया में होने वाले आपस के झगड़े निपटाते और उलझने सुलझाते चले आए हैं। इस महान हस्ती का नाम है श्री चंद्रशेखर, जिनसे मैं आपको गीतमाला की छाओं के किसी अगले वॉल्यूम में जल्द ही मिलवाऊंगा। अच्छा भाई, आज 1964 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की ऊपर वाली पायदानों पर भी तो हमें कदम रखना है। देखिए पायदान नंबर 17 पर उस साल कैसे लटके झटके हो रहे थे।
6: न झटको जुल्फ

ना ना रोना बंद, क्योंकि मेरे रेडियो सैलून के दूसरे सफर की दास्तान अब शुरू हो रही है, सुनिए। हाँ तो भाई, जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट से सीधे रेडियो सैलून पहुंचा ना, तो मैंने डायरेक्टर जनरल साहब से मिलकर कहा, सर मैं आ गया हूँ, अब कहिए कब मुझे माइक्रोफोन पर काम शुरू करना है। मगर डीजी साहब बड़े सीरियस होकर बोले, नो, प्रधानमंत्री साहबा का ऑर्डर है कि जो रेडियो सैलून पर नौकरी नहीं कर रहा हो उसको डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट की परमिशन बिल्कुल मत दीजिए। तो मैं हड़बड़ाकर बोला, मगर सर आप ही ने तो मुझे अर्जेंटली बुलाया था बंबई से, तो अब मैं क्या करूं, वापस बॉम्बे लौट जाऊं? तो वो बोले, नहीं, बस तुम माइक्रोफोन पर खुद नहीं बोलना, बल्कि हमने जो दो तीन नए टेम्पररी अनाउंसर्स को इस काम के लिए चुना है, कोरे लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, उनके पास तुम बैठना, जब एक गीत बज रहा हो तो उसके बाद वाली अनाउंसमेंट तुम टेम्पररी अनाउंसर को लिखाओ, रिहर्स करवाओ और गीत ख़त्म होने पर उसी से बुलवाओ। तो मैं बोला, मगर सर मुझे अपने वीकली हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की रिकॉर्डिंग बॉम्बे में करके लाने का तो टाइम ही नहीं दिया था आपने, उसमें तो मुझे ही बोलना पड़ेगा भाई। तो वो बोले, ओके, तो तुम उसे गीतमाला को ब्रॉडकास्ट से दो रोज पहले किसी खाली स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाओ और उसमें गाने भी मिक्स करवाओ और बुधवार की रात उसी टेप को ब्रॉडकास्ट करवाओ। तो साहब यही मुझे वहां करना पड़ा, उसी तरह जैसे आज भी मैं अपने स्टूडियो में अपने रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन की मदद से गीतमाला की छाओ में का वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड करवा रहा हूं, और अब हाथ के इशारे से उन्हें समझा रहा हूं कि बेटा लगाओ 1964 के गीत नंबर

नंबर 12 पर गूंजा था गीत उस फिल्म का जिसका यादगार प्रीव्यू मैंने देखा था आर के स्टूडियोज में, और वो यादगार इसलिए था कि मुझे वहां उस फिल्म की रेडियो पब्लिसिटी के लिए बुलाया गया था और मैंने वो शो देखा फिल्म के दो जबरदस्त सितारों राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच बैठकर, दो गजब के लोग जिनका मैं फैन भी था और छोटा मोटा दोस्त भी, मगर अफसोस के अब तो

साहब संगम के बिछड़े हुए सितारों के गम ने मुझे फिर पहुंचा दिया उसी जमाने में हुए मेरे रेडियो सिलोन के सफर के माहौल में, जब मैं माइक्रोफोन के पास बैठ तो सकता था मगर मुझे माइक्रोफोन पर बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरे दोस्त विजय किशोर दुबे तो तब तक रेडियो सिलोन की नौकरी छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरे एक और जबरदस्त दोस्त और बड़े पॉपुलर अनाउंसर ग्रेग, जो रेडियो सिलोन की इंग्लिश कमर्शियल सर्विस पर गीतमाला का इंग्लिश वर्जन यानी हिट परेड पेश किया करते थे, वो वहां थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन अकेले में बताया कि संभल के रहना, यहाँ आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं और रेडियो सिलोन पर एक छोटी सी गड़बड़ हो भी गई थी जिसकी वजह से रेडियो सिलोन में बंदिशों की लपेट में आ गया है। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ने देश के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करवाया था जिसके पहले और बाद में थोड़े से संजीदा सोबर म्यूजिक बजाने का ऑर्डर था, मगर गलती से जरा सा गमगीन जरा सा सैड सा म्यूजिक बज गया। भाई वैसे तो इससे कोई फर्क ना पड़ता मगर ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े अखबार ने शरारत कर दी। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि देखा रेडियो सिलोन ने भी कैसे मैडम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से पहले और बाद में फ्यूनरल मार्च बजा दिया यानी मातम का शोक संगीत बजा दिया और साहब धूम मच गई। कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे रेडियो स्टेशन पर भी बड़ी तकलीफें टूट पड़ी साहब।

104.8. बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में बहन और भाइयों, और भी कई गड़बड़े हुई मेरे साथ रेडियो सिलोन में उन दिनों, लेकिन अभी तो मुझसे गीतमाला की छाव कह रही है कि ए भाई चुप कर और मोहम्मद रफी जैसे किसी सुरीले इंसान को बोलने दे तो लीजिए भाई सुनिए।

0: साथियों, आप तो जानते ही हैं कि फिल्म में इस गीत को प्यार में डूब कर गाया था शम्मी कपूर ने। तो यहाँ एक छोटी सी बात सुन लें शम्मी जी के बारे में। उस फिल्म कश्मीर की कली के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत की जबानी।
1: अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा मर्द दोस्त नहीं पाया, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जिसके साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, शमी उसके लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन शमी में एक बहुत बड़ी खराबी है, और वो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना। वो खाएगा तो बहुत खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, काम करेगा तो बहुत करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी एक कमज़ोरी भी है, और वो है उसकी दवाइयों का बक्सा। जहाँ भी जाएगा उसे अपने साथ ले जाएगा। सुबह से शाम तक वो 15-20 तरह के टैबलेट्स खाता ही रहता है। मान लीजिए शूटिंग के दौरान में किसी को मामूली सी चोट लग गई, फौरन शमी साहब की दवाइयों का बक्सा आ जाएगा, और उसमें से वो तरह तरह की रंगीन गोलियां निकाल कर उस आदमी को खिला देंगे, चाहे उनसे कुछ फ़ायदा हो या ना हो। शमी में एक और बुराई है, और वो है फाइटिंग सीन्स में खुद काम करना। अक्सर फाइटिंग सीन्स के लिए हम लोग डुप्लीकेट्स रखते हैं, ताकि खतरे का काम या मुश्किल काम वो लोग करें। लेकिन शमी साहब नहीं मानेंगे, वो हर काम खुद करेंगे, और इस तरह से कभी कांच से अपना हाथ काट लेंगे, या फिर कभी चलती जीप से कूदकर अपना पैर तोड़ लेंगे।
0: दोस्तों, शम्मी कपूर की जवानी की उस कांच तोड़ अदा का सबूत मैंने भी देखा था श्रीनगर के एक बड़े महंगे महल जैसे होटल के बड़े दरवाजे का कांच, जिसे शम्मी ने ताव में आकर घूंसा मारकर चकनाचूर कर दिया था। इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो शम्मी को टाइटल दिया गया था बागी अदाकार। वैसे फिल्मों में एक बागी संगीतकार भी तो हुआ करते थे, मदन मोहन। उनकी धूमधाम का जिक्र बस अभी आएगा बहनों भाइयों, मगर पहले उनकी नाजुक भावुकता से उभरी हुई एक धुन सुन लीजिए, जो तलत महमूद के गाए हुए सबसे अमर गीतों में शामिल होते हुए भी सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई है।

0: फिर वही।
1: इस फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर थे खुद कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश। तो बहनों भाइयों जरा मदन मोहन जी की आवाज में सुनिए कि ओम प्रकाश जी से उनका कैसा धूम धड़ाकेदार रिश्ता था।
2: जहारा के बनने के वक्त का वाकया मुझे याद है
3: जी।
2: कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था
3: जी।
2: तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे। कहने लगे मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते।
3: अरे
2: बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी।
3: अरे बाप,
2: उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा देखो ओम, एक लफ्ज तुमने कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा।
1: अच्छा साहब, मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन। मगर रोशन की आदतें मदन से बिल्कुल अलग थीं। मदन भैया का चाल चलन अगर फौजी था तो रोशन भाई हुआ करते थे हंसमुख, खामोश, भावुक, मिलनसार, बिल्कुल उनके एक गीत की तरह, जिसका मुखड़ा अंतरा उन्होंने अपने घर में खुद अपनी ही आवाज में शायद कुछ बीमारी की हालत में गाकर रिकॉर्ड करवाया था।

याद आया आपको ये किस फिल्म का गीत था? नई उम्र की नई फसल और सन 64 की छांव का अगला गीत मैंने उसी फिल्म से चुना है आपके लिए।

हो गई थी मेरे उस रेडियो सैलून के दूसरे सफर में। शुक्र है मेरी झुंझलाहटें कुछ कम करने के लिए शिव कुमार सरोज अपनी तबीयत ठीक ठाक करके लौट आए थे कोलंबो, तो मुझे एक दोपहर कुछ घंटों की छुट्टी मिल गई और मैं कोलंबो से कुछ दूर उस जगह जा पाया जहां मैंने सुना था कि हाथियों का बड़ा सुंदर डांस होता है। तो मैंने जाकर देखा वो डांस और अगले दिन स्टूडियो जाकर मैंने आधे घंटे का एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाथियों के उस नाच पर। मगर एक दिन बाद जब वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसे शिव कुमार सरोज ने सुना और वो दौड़ते हुए आगे मेरे पास और बोले, अमीन भाई ये आपने क्या कर दिया, हाथी तो निशान है, सिंबल है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी का और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेडियो सिलोन पर हाथी का कोई गीत बजना ही नहीं चाहिए।

आपने क्या कर दिया? हाथी तो निशान है, सिंबल है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी का, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेडियो सिलोन पर हाथी का कोई गीत बजना ही नहीं चाहिए, बल्कि स्टूडियो की तरफ जाने लगा ना तो भाई मेरे छक्के छूट गए। क्यों और कैसे ये मैं अभी कुछ मिनट बाद आपको बताऊंगा। बड़ी मजेदार कहानी है। 1964 की छाव में छुपे दो और गीतों और सालाना संगीत सीढ़ी की कुछ झलकों के बाद बताऊंगा। पहले सुनिए उस साल के छुपे रुस्तम संगीतकार जी एस कोहली की गजब की धुन, जिसे लोकप्रियता की धूप

0: रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सदैव भरी। बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में और अब जरा दिल थाम कर बैठिए। आ रही है एक और फैंटास्टिक धुन जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई।
1: ओ नो दिरे, एक एक कथा सुधा

भाई तर्ज तो यही थी जो हेमंत कुमार ने अपनी बंगाली फिल्म नीलाकाशेर नीचे में दी थी 1959 में। अपनी लाजवाब बंगाली धुनों को बाद में हिंदी फिल्मों में ढालना ये हेमंत दा ही नहीं सचिन देव बर्मन साहब भी अक्सर किया करते थे। बहरहाल ओ नोदी रे का हिंदी वर्जन आया था 1964 की फिल्म कोहरा में, आप तो जानते ही है ना, और वही है आज का अगला छाओ में छुपा हुआ गीत।

0: सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: टुगेदर वी डेलिभर।

0: पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: 7 से 36 सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं विगत 2 दशक देखि त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्न सफल भएका छौं
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चांदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामानहरू
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423355
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: रोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की
1: और आज 1964 की यादें समेटकर पेश कर रहा हूँ उस साल के यादगार गीतों का दूसरा हिस्सा।

इस खूबसूरत फिल्म मेरे महबूब का संगीत 2 वर्षों में बट गया था साहब, तभी इसके कई गीत छांव में रह गए थे। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक 2 बार पहुंचा। सन 1963 में वो नंबर 24 पर था और 64 में आप उसकी झलक काफी ऊपर की पायदान पर सुनने वाले हैं। बहरहाल आज मैं अपनी यादों में करवटें बदल बदल कर आपको सुनाऊंगा गीतमाला के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही अजीब सी कहानी। आप तो जानते ही हैं बहनों भाइयों कि मेरा नाता रेडियो सिलोन से जुड़ा सन 1951 में, फिर सन 1952 में गीतमाला शुरू हुई और धूम मचाने लगी और फिर और कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए मैं करता रहा। 1956 में मैंने कोलंबो में रेडियो सिलोन के स्टेशन पर भी काम किया महीने भर के लिए और यही सब करते करते बनते बनते मैंने रेडियो सिलोन को ही अपनी पहली प्रेमिका पहली महबूबा बना लिया और मन ही मन में उसके लिए ऐसे मजेदार गाने भी गाने लगा।

0: अच्छा भाई 1964 की छाओ के दो गीतों में आपने नौशाद साहब की मधुर धुन भी सुन ली और दादा सचिंदे बर्मन की मजेदार तर्ज भी सुन ली। अब सुनिए बहनों और भाइयों हाल रेडियो सिलोन की उस बड़ी अजीब सी घटना का जो शुरू हुई थी 1964 के आखिर में और रंग लाई अगले साल जनवरी में। हुआ यूं बहनों और भाइयों के सन 64 में रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया हिंदी सर्विस का कारोबार सिर्फ दो शानदार अनाउंसर्स चलाया करते थे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज। मगर साल के आखिर में शिव कुमार सरोज बीमार पड़ गए और इलाज के लिए बंबई लौट आए और सारी सर्विस का बोझ कई हफ्तों तक अकेले संभालते संभालते हमारे गोपाल शर्मा भी इतने थक गए कि एक सुबह उन्होंने फट से ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और कोलंबो छोड़कर बंबई लौट आए। तो फौरन रेडियो सिलोन के डायरेक्टर जनरल ने हमारे बंबई के दफ्तर में फोन किया कि यहां सब गड़बड़ है, हिंदी सर्विस खतरे में है। कुछ साल पहले अमीन सायानी यहां आए थे, वो हिंदी सर्विस का सारा काम जानते हैं, उन्हें फौरन कोलंबो भेजिए। बस तो साहब मुझे ऑर्डर मिला कि अभी इमीडिएटली सामान बांधो, शाम तक तुम्हारा वीजा और एयर टिकट आ जाएगा और कल सुबह के प्लेन से तुम फौरन पहुंचो कोलंबो, गो। तो भाई मैं तो खुशी खुशी लपटा और झपटा कि वाह वाह मिल गया मुझे दूसरा मौका रेडियो सिलोन जाने का। तो बस अगले दिन पहुंच गया मैं प्लेन में बैठकर कोलंबो और एयरपोर्ट से सीधे अपना सूटकेस थामे टैक्सी पकड़कर दौड़ा रेडियो सिलोन के स्टेशन पर। मगर वहां पहुंचकर मैं दंग रह गया बहनों भाइयों, क्योंकि वहां तो भाई सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था।
1: वो हम

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: सॉरी बहनों भाइयों, मेरी बड़ी पुरानी आदत है ना बातों से गीतों को जोड़ते जाने की। खैर, इकबाल कुरैशी की धुन से सजे हुए छाव में गूंजते हुए इस लाजवाब गीत के बारे में एक खास बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और हीरो भी वो महान इंसान थे जो पिछले कई वर्षों से फिल्मी दुनिया में होने वाले आपस के झगड़े निपटाते और उलझने सुलझाते चले आए हैं। इस महान हस्ती का नाम है श्री चंद्रशेखर, जिनसे मैं आपको गीतमाला की छाव के किसी अगले वॉल्यूम

0: तुम्हें जल्द ही मिलवाऊंगा। अच्छा भाई, आज 1964 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की ऊपर वाली पायदानों पर भी तो हमें कदम रखना है। देखिए पायदान नंबर 17 पर उस साल कैसे लटके झटके हो रहे थे।
1: न झटको जुल्फ़

ना ना रोना बंद, क्योंकि मेरे रेडियो सैलून के दूसरे सफर की दास्तान अब शुरू हो रही है, सुनिए। हाँ तो भाई, जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट से सीधे रेडियो सैलून पहुंचा ना, तो मैंने डायरेक्टर जनरल साहब से मिलकर कहा, सर मैं आ गया हूँ, अब कहिए कब मुझे माइक्रोफोन पर काम शुरू करना है। मगर डीजी साहब बड़े सीरियस होकर बोले, नो नो नो, प्रधानमंत्री साहब का ऑर्डर है कि जो रेडियो सैलून पर नौकरी नहीं कर रहा हो उसको डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट की परमिशन बिल्कुल मत दीजिए। तो मैं हड़बड़ाकर बोला, मगर सर आप ही ने तो मुझे अर्जेंटली बुलाया था बंबई से, तो अब मैं क्या करूं, वापस बॉम्बे लौट जाऊं? तो वो बोले, नहीं नहीं, बस तुम माइक्रोफोन पर खुद नहीं बोलना, बल्कि हमने जो दो तीन नए टेम्पररी अनाउंसर्स को इस काम के लिए चुना है, कोरे लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, उनके पास तुम बैठना। जब एक गीत बज रहा हो तो उसके बाद वाली अनाउंसमेंट तुम टेम्पररी अनाउंसर को लिखाओ, रिहर्स करवाओ और गीत खत्म होने पर उसी से बुलवाओ। तो मैं बोला, मगर सर मुझे अपने वीकली हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की रिकॉर्डिंग बॉम्बे में करके लाने का तो टाइम ही नहीं दिया था आपने, उसमें तो मुझे ही बोलना पड़ेगा भाई। तो वो बोले, ओके ओके, तो तुम उसे गीतमाला को ब्रॉडकास्ट से दो रोज पहले किसी खाली स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाओ और उसमें गाने भी मिक्स करवाओ और बुधवार की रात उसी टेप को ब्रॉडकास्ट करवाओ। तो साहब यही मुझे वहां करना पड़ा, उसी तरह जैसे आज भी मैं अपने स्टूडियो में अपने रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन की मदद से गीतमाला की छाओ में का वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड करवा रहा हूं और अब हाथ के इशारे से उन्हें समझा रहा हूं कि बेटा लगाओ 1964 के गीत नंबर

नंबर 12 पर गूंजा था गीत उस फिल्म का जिसका यादगार प्रीव्यू मैंने देखा था आरके स्टूडियोज में, और वो यादगार इसलिए था कि मुझे वहां उस फिल्म की रेडियो पब्लिसिटी के लिए बुलाया गया था और मैंने वो शो देखा फिल्म के दो जबरदस्त सितारों राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच बैठकर, दो गजब के लोग जिनका मैं फैन भी था और छोटा मोटा दोस्त भी, मगर अफसोस के अब तो

साहब, संगम के बिछड़े हुए सितारों के गम ने मुझे फिर पहुंचा दिया उसी जमाने में हुए मेरे रेडियो सिलोन के सफर के माहौल में, जब मैं माइक्रोफोन के पास बैठ तो सकता था मगर मुझे माइक्रोफोन पर बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरे दोस्त विजय किशोर दुबे तो तब तक रेडियो सिलोन की नौकरी छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरे एक और जबरदस्त दोस्त और बड़े पॉपुलर अनाउंसर ग्रेग, जो रेडियो सिलोन की इंग्लिश कमर्शियल सर्विस पर गीतमाला के इंग्लिश वर्जन यानी हिट परेड पेश किया करते थे, वो वहां थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन अकेले में बताया कि संभल के रहना, यहाँ आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं और रेडियो सिलोन पर एक छोटी सी गड़बड़ हो भी गई थी जिसकी वजह से रेडियो सिलोन में बंदिशों की लपेट में आ गया है। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ने देश के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करवाया था जिसके पहले और बाद में थोड़े से संजीदा सोबर म्यूजिक बजाने का ऑर्डर था, मगर गलती से जरा सा गमगीन जरा सा सैड सा म्यूजिक बज गया। भाई वैसे तो इससे कोई फर्क ना पड़ता मगर ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े अखबार ने शरारत कर दी। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि देखा रेडियो सिलोन ने भी कैसे मैडम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से पहले और बाद में फ्यूनरल मार्च बजा दिया यानी मातम का शोक संगीत बजा दिया और साहब धूम मच गई। कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे रेडियो स्टेशन पर भी बड़ी तकलीफें टूट पड़ी साहब।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में बहन और भाइयों, और भी कई गड़बड़े हुई मेरे साथ रेडियो सिलोन में उन दिनों, लेकिन अभी तो मुझसे गीतमाला की छाव कह रही है कि ए भाई चुप कर और मोहम्मद रफी जैसे किसी सुरीले इंसान को बोलने दे तो लीजिए भाई सुनिए।

0: साथियों, आप तो जानते ही हैं कि फिल्म में इस गीत को प्यार में डूब कर गाया था शम्मी कपूर ने। तो यहाँ एक छोटी सी बात सुन लें शम्मी जी के बारे में। उस फिल्म कश्मीर की कली के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत की ज़बानी।
1: अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा मर्द दोस्त नहीं पाया, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जिसके साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, शमी उसके लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन शमी में एक बहुत बड़ी खराबी है, और वो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना। वो खाएगा तो बहुत खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, काम करेगा तो बहुत करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी एक कमज़ोरी भी है, और वो है उसकी दवाइयों का बक्सा। जहाँ भी जाएगा उसे अपने साथ ले जाएगा। सुबह से शाम तक वो 15-20 तरह के टैबलेट्स खाता ही रहता है। मान लीजिए शूटिंग के दौरान में किसी को मामूली सी चोट लग गई, फौरन शमी साहब की दवाइयों का बक्सा आ जाएगा और उसमें से वो तरह तरह की रंगीन गोलियां निकाल कर उस आदमी को खिला देंगे, चाहे उनसे कुछ फ़ायदा हो या ना हो। शमी में एक और बुराई है, और वो है फाइटिंग सीन्स में खुद काम करना। अक्सर फाइटिंग सीन्स के लिए हम लोग डुप्लीकेट्स रखते हैं ताकि खतरे का काम या मुश्किल काम वो लोग करें, लेकिन शमी साहब नहीं मानेंगे, वो हर काम खुद करेंगे। और इस तरह से कभी कांच से अपना हाथ काट लेंगे या फिर कभी चलती जीप से कूदकर अपना पैर तोड़ लेंगे।
0: दोस्तों, शम्मी कपूर की जवानी की उस कांच तोड़ अदा का सबूत मैंने भी देखा था श्रीनगर के एक बड़े महंगे महल जैसे होटल के बड़े दरवाजे का कांच, जिसे शम्मी ने ताव में आकर घूंसा मारकर चकनाचूर कर दिया था। इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो शम्मी को टाइटल दिया गया था बागी अदाकार। वैसे फिल्मों में एक बागी संगीतकार भी तो हुआ करते थे, मदन मोहन। उनकी धूमधाम का जिक्र बस अभी आएगा बहनों भाइयों, मगर पहले उनकी नाजुक भावुकता से उभरी हुई एक धुन सुन लीजिए, जो तलत महमूद के गाए हुए सबसे अमर गीतों में शामिल होते हुए भी सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई है।

0: इस फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर थे खुद कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश। तो बहनों भाइयों जरा मदन मोहन जी की आवाज में सुनिए कि ओम प्रकाश जी से उनका कैसा धूम धड़ाकेदार रिश्ता था।
1: जहां आरा के बनने के वक्त का वाकया मुझे याद है
2: जी।
1: कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था
2: जी।
1: तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे। कहने लगे, मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते।
2: अरे
1: बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी।
2: अरे बात,
1: उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा, देखो ओम, एक लफ्ज तुमने अब कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा।
0: अच्छा साहब, मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन। मगर रोशन की आदतें मदन से बिल्कुल अलग थीं। मदन भैया का चाल चलन अगर फौजी था तो रोशन भाई हुआ करते थे हंसमुख, खामोश, भावुक, मिलनसार, बिल्कुल उनके एक गीत की तरह, जिसका मुखड़ा अंतरा उन्होंने अपने घर में खुद अपनी ही आवाज में शायद कुछ बीमारी की हालत में गाकर रिकॉर्ड करवाया था।
3: इस

याद आया आपको ये किस फिल्म का गीत था? नई उम्र की नई फसल और सन 64 की छांव का अगला गीत मैंने उसी फिल्म से चुना है आपके लिए।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और अब जरा दिल थाम कर बैठिए, आ रही है एक और फैंटास्टिक धुन जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई।
1: ओ नदी रे, एक कथा सुधा

कर्ज तो यही थी जो हेमंत कुमार ने अपनी बंगाली फिल्म नीला काशिर नीचे में दी थी 1959 में। अपनी लाजवाब बंगाली धुनों को बाद में हिंदी फिल्मों में ढालना ये हेमंताई नहीं सचिन देव बर्मन साहब भी अक्सर किया करते थे। बहरहाल ओ नोदी रे का हिंदी वर्जन आया था 1964 की फिल्म कोहरा में, आप तो जानते ही है ना, और वही है आज का अगला छाओं में छुपा हुआ गीत।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: बिहान को 5 बजिसके अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो। प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग।
1: आज श्री सालिभानिया साके 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 60 संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल भाद्र महिनाको 28 गते आदित्यवार तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 13 तारिक सन 2026 भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि हस्ता नक्षत्र शूल आनन्दादि योग कौलभ करण मानस योगा आज चन्द्रमा कन्या राशिमा अवस्थित श्री सूर्य दक्षिणायण यो महिना श्री सूर्य सिंह राशिमा अवस्थित आज काठमाडौँमा अहिले 5:48 सूर्योदय हुनेछ। आज शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनी कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सधैँ अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।